देखो, विन तीसरा ना नाई ना कंपाइन ना इन रहा थी उली बरार सिर हो तू इरने मा कितनी है। हाँ के इरने मा कितनी है मूजी के रोते हम भाई ये काला ने मूजी के उसी जले बारे तो नहीं आरु पोर्टू एन मान मूजी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट यू ओसी आर्टिस्ट रोड इश टी वार्नियन एंस नीडिट एंस नीडिट वी तुर्मा इतलेटन फल मेंसाजिंग उसी दे Okay, ai funang o tutia sabruni ami kare ai funang o. Ai kos musika tetung la kon speranza u si valunyan dia kan bingku. O si ne bi rekoi su si ne bi injinya dia kan bing. Musika ni te preparado. Ini preparado hela ursida mita gaspa eh. No si di tegastan musika emania dobeng. Emania dobeng si akompanya kala bing Mariana. Ita tugas be emania dobeng ne uzi jale para itu nia ne dia kusir jale para itu nia ta para se ke musika ruwa iku sona karike musika emania dobeng uzi jale para itu nia si bosku dia kwe ta ne bing ku heng na fat nia ne bing